याज्ञा करम है सर्वबलदारियो अनाति अनंतो दिव्येनी मोक्षांपन मातावन कान्यमारिय तुमानगे गतहा प्राणय ओबगे श्री कुमारयाट ओबिन वासस्थानयक वन लेस इस्प्रीतु सांतु अरमिन हेतु युक्त कर दी वदाला वेद अप सतुटु सिहि करनो तुमियगे दयाबर याज्ञाव बला अपटे देन्नाव नपुरु वलिन हा अनवरत मरणेन गलवीम सलसो मनव मेकी दे अपगे स्वामी वो जेसु क्रिसु सहांसे उदिसाम अपट लेबेवा आमेन।

याज्ञाकरं सर्वबलधारिणो अनाद्य अनंतो दिव्येनि मोक्षांपन मातावन कन्यमरियतुमान्गे गतहा प्राणय ओबगे श्री कुमारयाट ओबिन वासस्थानयक वन लेस इस्प्रीतु सांतु अरमिन हेतु युक्त कर दी वदाला वेद अप सतुटु सिहिकरन ओतुमियगे दयाबर याज्ञाव बला अपटे देन्नाव नपुरु वलिन हा अनवरत मरणेन गलवीम सलसो मनव मे की दे अपगे स्वामी ओ जेसु क्रिसु सहसे उदिसाम अपट लबेवा आमेन।

0: हला हे तिलियाली हम आला थले मेले ई खाती हाले हम आला तिलियाले खाती आला हे के तिलियाली बा हले हले वेले वसुते बाला खडरवाली बा हे मेले ले तिलियाला थले सोए नवतल देन असुते बाला येशु स्वांस के नाम में भले आओ
1: वेखे रामा खाती दा वे तेरे वे
0: ई हम आला के तिलियाले हम आ
1: तेरे वे दे दे नवाती दा हालेलुया
0: केतेलिया माला माती हाना हेले केतेलिया मेले माथिलिया ले ओबरा सुति वेवा स्वामी इन वास ओबाक्सी उदाउ करन ने किने